0: ऊपको पकारे मेका ठेकारा नहीं कोई हाकिना मराय इज इन सिडनी ट्रू और फॉल्स कोई हाकिना मराय इज इन सिडनी ट्रू और फॉल्स फॉल्स कोई हाकिना मराय इज इन फाइनारो
1: ऊपको पकारे रिसोर्सेज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय वाइकाटो टाइ